जब संभ कर मदम माजो भर गए मामच गर्म बार आया मैं न तो गर्मी दिखे मामन अगर दुखादर समाज वाय खुरी जो बाल मोज फरमाज़र बाल मोज बाल कुम्बा